0: ഈ ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പുലർവട്ടം പരിപാടി സമാപിക്കുന്നു. സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സെ സമാചാർ പ്രഭാത് കെ സാത് മേ ഫർഹത് നാസ്. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया. अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए. कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया. दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका. और खेलों में, टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है. उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है. श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी.
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए. श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है. प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है. श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है.
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है. हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है. इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है.
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया. उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है.
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है. भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है.
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है. उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे. उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं. श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.
3: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है.
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
8: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल

0: सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमरीकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पड़जी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पड़जी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
3: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा UPI. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: Defence Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a 3-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defence Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष

उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करते रहें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में सुबह हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

0: बच्चों रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी है ना। पहचान गए ना, रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हां बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना। कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
1: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
2: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
3: अरे हाँ, गाड़ी रोको गाड़ी रोको।
2: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
3: हाँ अब बन गई रेल।
1: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
2: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
3: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
4: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
3: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
4: चलो
1: रेल चली भाई रेल चली,
4: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
2: हाँ दादाजी हम भी थक गए।
4: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
2: अच्छा
4: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
3: दादाजी मैंने देखी है।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
4: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
3: अरे वाह,
4: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
2: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
4: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
5: अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
4: अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
5: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
4: बैठो बैठो जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो
3: रानी, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
4: हाँ हाँ उतरो बेटी।
0: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
4: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
4: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
4: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
4: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
4: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।

डिब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो सब

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा. भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा. विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते. और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं. इससे भारतीय रेलवे

0: मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसा नायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका

0: विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में एनडीआरएफ का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
1: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों

0: और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 डॉलर की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defence cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover

0: Well, friends, before we move ahead, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग तीन महीने पहले के स्तर पर आ गए. सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.1% लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक यानी 0.9% नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया. इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी आधा आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended lower for the third consecutive session today. The Sensex plus 13.64. The Nifty also shed 204 points or 0.9% to settle at 23,432. In the broader market on the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices also declined 0.5% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां एचसीएल टेक 4.5%, इंफोसिस 4.4% और टेक महिंद्रा 3.9% रही. वहीं सबसे ज्यादा लाभ वाली कंपनियों में अडानी पोर्ट्स 3.7%, टाटा स्टील 2.4% और ट्रेंड 1.1% के बढ़त में थी.
0: A look at the sectoral indices. Well, in the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, IT fell 3.2%, focused IT dropped 3%, and realty lost 2%. In contrast, middle advanced 1.9%, hospitals gained 1.4%, and utilities added 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,600 companies declined, 1,792 advanced, and 196 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ. उदयन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज अगर बाजार को हम देखें तो तीन महीने पहले के स्तर पर हम मार्केट में पहुंच चुके हैं. निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये चिंता का विषय है या ये एक मार्केट में सर्टेन ऐसी स्थिति जिस पर आगे आकर के हम बढ़त पा सकते हैं या इससे भी नीचे जाने की संभावना है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जो खाड़ी में संघर्ष चल रहा है उसके वजह से तेल के दामों में जो उछाल आया है और एक $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको मेरे ख्याल से आज रीच किया गया है, तो वो एक चिंता अपनी जगह में बनी हुई है. और इसको अब जो बाजार है विश्व स्तर में लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि ये जो संघर्ष है ये अब बहुत जल्दी ये रुकने वाला नहीं है. और जो दाम है, सबसे इम्पोर्टेंटली कच्चे तेलों के दाम में जो एक कमी, जो एक सस्टेन्ड कमी है, वो शायद देखने को फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 अगले साल में शायद तब तक का इंतजार करना पड़े. और ये आपूर्ति से जुड़ी हुई बात है और जब तक वो संघर्ष खत्म नहीं होगा तो आपूर्ति में जो जो कैपेसिटी में जहां भी रिफाइनरी होती जो मालवाहक जहाज है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं, ये रातों रात ठीक नहीं होते हैं, तो इसमें वक्त लगेगा. तो वो बात अब मार्केट्स फैक्टर इन कर रही हैं. दूसरी बात आपने बताया कि ये निफ्टी 50, तो कई मुझे एक सोच जो काफी विश्लेषक कर रहे हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है. वो ये है कि वो उनका ये कहना है कि आप हम लोग निफ्टी 50 को देख के मार्केट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन वाले जो है उसी से डिपेंड, वहीं से निकलता है. पर लोगों का दावा नहीं, ये तर्क है और वो उसमें डेटा भी है कि दूसरी जो कंपनी जो वो 50 निफ्टी 50 से आगे जो मिड कैप की टेरिटरी में चली जा रही है, तो उनके अगर आप रिजल्ट्स देखें, उनके अगर फाइनेंशियल्स देखें, वहां पे काफी प्रगति नजर आ रही है और वो आपके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंडियन जो वित्तीय संस्थान है जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो भी वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं जो कि निफ्टी 50 तो है ही वो, पर वो उधर उस साइड में जा रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे निवेश हो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो जो इंडिया हालांकि आज प्रभावित वो भी हुए नेगेटिवली जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा, पर वहाँ पे लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 year 6 month अगर रिटर्न देखें, जो कि देखना नहीं चाहिए इक्विटीज में, 3 year देखें, 2 year देखें, 5 year देखें, तो सारे पीरियड्स में अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड देखें, सब में वो आप बेहतर करते हुए पाएंगे। तो उनका तर्क ये है और ये मेरे को काफी आकर्षक लगता है, तो ये श्रोताओं को बताने लायक बात है।
3: लेकिन इन सब के बीच में आईटी शेयर्स में गिरावट हम जो देख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आईटी के फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद भी हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं।
2: तो वो कारण सीधा तो मैं नहीं बता पा रहा क्योंकि मैंने विश्लेषण किया नहीं है
3: जी जी।
2: पर मेरे को ताज्जुब ना होगा कि अगर ये इसका कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनकी सेलिंग की वजह से हो, क्योंकि वो भी बाहर लेके निकल रहा है। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट वो कहते हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो एक रिस्क ज्यादा होता है, फिर करेंसी से जुड़ी हुई रिस्क होती है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से जुड़ी हुई रिस्क होती है, जो कि हमारे केस में नहीं, हम हमारी करेंसी के केस में है और हमारी करेंसी को दबाव में है। तो वो जब आप देखते हैं तो वो एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और यील्ड्स जो है लोअर रिस्क यील्ड्स जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, जो कि बहुत सेफ माने जाते हैं क्योंकि यील्ड वहां पे बेहतर हो रहे हैं। तो कोई फंड मैनेजर होगा इंटरनेशनल, वो ये देखेगा कि ये रिस्क लेके मैं ये उठाऊं या मैं इधर लगाऊं, तो वहां पे एक जो कंपैरिजन है वहां पे वो फेवरेबल हो रहा है। तो कई बार जो पुल आउट हो रहा है वो कुछ दूसरे मार्केट्स में भी जा सकता है, जैसे आप साउथ कोरिया में आप दिलचस्पी रख सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर है साउथ कोरिया दूसरे मार्केट्स में। पर बाकी जो है आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि नहीं भाई रन अप काफी हो गया गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में, हम यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं, तो मुझे ना ताज्जुब हो कि ऐसी बात हो रही हो और जिसके वजह से आप ऐसे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
0: But then Nikhil mentioned IT, I think he touched a raw nerve, so to speak. Could it also be because of the fact that US, much of our IT export is in the US and Europe, and they are having high inflation. It's about 3.4% in US, which is much beyond their digestible limit. Do you think that could be a factor as well?
2: It could be, but you know... See, you will not. I'm an eternal optimist, but one has to also give. One has to look at it also with equanimity, right? See, is the whole whiplashing that has been happening about Indian IT is that they are not coming up with foundational models and it's only the Mag 7 or whatever names you want to give. They are not into making chips, they are not coming up with the AI foundational models, or they are not adapting like the way Chinese are doing. Is that the only part of the chain that will exist in AI? Okay, who are the people who are going to be using AI? We have got the largest population and we have got the largest mobile penetration. Who do we think are going to be using the AI, right? And who do we think, where will the innovation will be happening? Where people are using it, where do you think there the innovation will happen, or where there are just 20 million, 40 million, 50 million people, that's where it's going to happen. Where do we think data centers are going to come about? Where do we think chips will have to be made on the ground because users are using it? So if we start looking at it from that point, then this whiplashing, you start to discount it quite a bit, and it's okay. I mean, these things move in circles. Tomorrow if Sarvam does a grand job, which it is, and there are others, you might see the story change. It doesn't take much time.
0: Sorry. Well, global crude oil prices surged today as escalating conflict in West Asia heightened concerns over disruptions to oil flows. Brent crude was trading 2.9% up at $100 and 81 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.7% up at $95 and 55 cents per barrel when reports last came in. And friends, now we go over live to our correspondent who is currently in Dubai for the latest updates from the region. Manish Shiva Zori is with us. Manish, hello.
4: Hi, Lalima.
0: Hi, Manish. Firstly, could you tell us what is the current situation in the region?
4: The situation remains tense. We've seen direct confrontation between US and Iran off late, but yesterday it was at a sharply escalated levels. So, I think it was one of the biggest attacks on ships, direct ships, since the beginning of the current conflict. I mean, we've seen other infrastructure being attacked earlier, but US claimed to have hit 5 ships, Iran claimed to have hit 10 ships directly. So, which I think is not such a good news for the maritime transport thing. Another news that that was reported yesterday is the Houthis attacking Saudi energy infrastructure, mm-hmm. including some of their oil facilities. So, if you look at it, it's not a great news in terms of not just shipping, but also in terms of general energy infrastructure in the region.
0: Mm-hmm. Right. Manish, today Brent crude has crossed the $100 per barrel mark. How is the current situation impacting the world from an economic perspective?
4: So Brent crude crossing 100 is always a warning sign for the global economy.
0: Yeah.
4: Because higher oil prices would mean higher cost for transport, electricity, manufacturing, and if we extrapolate that almost inflation for almost every goods that we consume. Now the problem here is back in July also we saw Brent rising beyond 100,
0: mm-hmm.
4: And we have seen in the past also Brent spiking beyond 100 but then coming back to the normal. The problem is the underlying causes this time around. The conflict doesn't seem to be dying down. There has not been any concrete diplomatic solution to it, and this whole uncertainty is what is making the situation tense. Because only this week, if I remember it right, the core OPEC plus countries decided to keep the output in October same as September. So that means there is no new oil coming in to the system,
0: right.
4: Plus the uncertainty of this US-Iran conflict means a lot of issues in terms of oil prices.
0: Right. Thank you, Manish, for giving us an insight into the current situation in West Asia. That was Manish Shiva Zori from Dubai. And moving on.
3: Udin ji, abhi hum jab oil ki baat kar rahe hain to kacche tel ki kimaton ka is tarah $100 se upar jana bharatiya arthvyavastha ke according agar is cheez ko samajhne ki prayas kare to kya lagta hai aapko ki kaisi sthiti hamare samne utpann ho rahi hai?
2: सबसे पहली बात तो इमीडिएटली मुद्रास्फीति के जो दबाव है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वो सीधे आ जाते हैं और ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है तो वो क्योंकि वो एक लाइफ ब्लड की तरह है अपने शरीर में रक्त जो है सारे अंगों में जाती है तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के में इम्पैक्ट होगा चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो ट्रांसपोर्ट में अगर होगा तो सारे चीज़ों में आ जाएगा तो वो एक प्रेशर है और हम अधिकतर बहुत ज़्यादा आयात करते हैं हमारे पास डोमेस्टिक जो सोर्सेज हैं वो हैं नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है और यूं तो हम रिन्यूएबल्स हमारे जो नॉन पेट्रोलियम वाले जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम वहां पे बेहतर कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में पर अभी भी हमारे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है तो वो सीधे इम्पैक्ट करेगा और वो क्योंकि ये मार्केट मंथ प्रोग्राम है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल्स में असर होने के अलावा मेरे को तो कोई वो नजर नहीं आता कि उसमें असर आप देखेंगे और कुछ दिन तक रहा तो वो तो आप जरूर पाएंगे हो सकता है कुछ तकरीबन कुछ केस में इमीडिएटली देखें, कुछ केस में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और आगे चल के वो मिलेगा, और कुछ तो ऑब्वियसली पास ऑन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंपनीज, तो वो इम्पैक्ट है। बट ये भी मैं कहता चलूं, भारत क्योंकि हम ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं जहाँ पे मुद्रास्फीति होती रही, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट में फिस्कल को मैनेज करें या मॉनेटरी मौद्रिक नीति को मैनेज करें या कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेज करें या लघु उद्योग में करें, हमें आदत है, प्रैक्टिस है
3: जी।
2: ये प्रैक्टिस बाकियों को नहीं है दुनिया में, तो वो टीका जो है ना मुद्रास्फीति के विरुद्ध जो टीका है वो हमें लग चुका है, तो इसमें से हम बेहतर उभरेंगे और उभर जाएंगे।
3: उधर एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की स्थिति को देखें जहां पर हम देख रहे हैं कि तीन महीने के पहले के स्तर पर यानी नीचे के स्तर पर आ चुके मार्केट में, इन्वेस्ट करने के हिसाब से या मार्केट में कुछ खरीदने के हिसाब से कैसा समय है?
2: फैंटास्टिक समय, पर आप वो सब ना करें, आप कोई भी वक्त जो है निवेश जो है वो डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम हर रोज सुबह व्यायाम करते हैं
3: जी।
2: कुछ चीजें जो है नियमित रूप से करते हैं, तो जैसे पौष्टिक खान पान करते हैं, ये वो आदत की तरह है। आप उस ये नहीं कि आपने एक दिवाली या दशहरे का भोज की तरह आपने निवेश किया कि हमने साल में एक बार करें, वो अगर करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। आप नियमित रूप से करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में मिलती हैं, और ये जो दो साल वाली बात है, ये इट इज दो साल दो महीने वट एवर आप कहेंगे, इट इज डजेंट लुक नाइस, देखने में लगता नहीं कि ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं, हमने एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया फिर कहीं और डाल देते तो अच्छा होता। पर दिक्कत यह है कि अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, उसकी अपनी यूटिलिटी होती है, अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को लड़ने के लिए हथियार सिर्फ इक्विटी ही है, इसलिए आपको जो पैसा आपको फॉरन नहीं चाहिए आप वहां लगाएं, उसको छेड़े मत। मैं कई लोगों को देख चुका हूँ वो ना क्या करते हैं, हर घंटे देखते रहते हैं, वो नहीं करना, डाल के जैसे आप एक पौधे के वो प्लांट डालते हैं और वेट करते हैं पानी देते रहते हैं, वही काम निवेश के साथ करना है।
0: Right. So have a discipline in investment, right?
2: Yeah.
0: Okay. Moving on. Sorry. The Union Cabinet has approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of more than 10,700 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. Well, the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to 4 lining of all the 7 high density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
5: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर है सूरत से वापी, वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा, और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है, अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी टेस्टिंग के लिए।
0: So then, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four lining of the 7 high density railway corridors, do you think it'll add to the PM or it'll enhance the PM Gati Shakti mission?
2: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors where the freight will move. See, the whatever we produce, it needs to move very fast.
0: Yes.
2: Through the road and also through the rail. Now what happens is same track is being used by both freight and passenger, then one cannot be going up at the cost of the other. Mm-hmm. So you need these dedicated stuff so that if one gets affected, the other doesn't. So you will need these kind of expansion because, you know, if you produce something, you need to get to the port fast so that you can export fast.
0: Absolutely.
2: And compete better. Yeah. So these are all things which foreign direct investment is also dependent on.
3: आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले 9 और 10 सितंबर को मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हो रही है. इस वर्ष ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक की थीम है मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में होने वाली इस बैठक से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के मुख्य नतीजों की समीक्षा भी की थी. उस दिन ब्रिक्स की इतनी बड़ी मीटिंग हमारे यहाँ देश में होने जा रही है. कई सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ट्रेड के हिसाब से देखें. खासतौर पे इंडियन ओशियन की हम जब बात करते हैं तो काफी कुछ नजर आता है कि यहाँ पर हमें नजर आएगा आगे चल करके. इंडो पैसिफिक की भी यहाँ पर बात होती है.
2: देखिए, ब्रिक्स में जो है एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में. एक तो ट्रेड है
3: जी.
2: जो कि हो रहा है और वो होता रहेगा, पर फाइनेंशियल सिस्टम मान लीजिए एक कंट्री ब्रिक्स में एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, आदान प्रदान हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या खुद की करेंसी में, खुद के पेमेंट सिस्टम में, इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है, पर क्या हम दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, म्यूचुअली आपने किया. हमारे जो जैसे यूपीआई इस्तेमाल होता है, क्या हम यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाकी दूसरे देश हमारे यहाँ इस्तेमाल किया, हमने उनके देश में किया. अगर ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा को कवर करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. क्योंकि अभी भी हम जो सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म में डिपेंड करते हैं वो यूरोप और अमेरिकन सेंट्रिक है, तो वहां से थोड़ा सा अगर एक कुछ हमें अल्टरनेटिव्स विकल्प और मिल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है उसको मेंटेन करके पॉलिसी पोजिशंस और इजीली हम ले सकते हैं.
3: आगे बढ़ते हैं एशियाई शेयर बाजारों में. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 1.4% की बढ़त रही, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरकर बंद हुआ. उदयन जी, अभी अगर हम बात करें चाइना की इन्फ्लेशन की, तो लगभग 3.8% टू 3.5% तक की बात हो रही है आगे बढ़ने की. ये किस तरह के हालात हैं? मतलब 3.5% से 3.8% तक जाने के जो हालात हैं, इनका क्या असर देखने को मिलेगा?
2: देखिए, ये उनका कंज्यूमर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से अलग अलग चल रहा है. कंज्यूमर में लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि उनके भी डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस हैं कुछ कुछ इलाकों में. जो उनके भी जो यूथ जनरेट हो रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं हो रहा है. तो वर्ल्ड ओवर ये एक चैलेंज है. कई लोगों का आर्ग्यूमेंट मतलब कॉन्वर्सेशन में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत को ही ये चैलेंज है. ये चैलेंज हर जगह है और सरकारें अपने हिसाब से वो डील कर रही हैं. तो डोमेस्टिक में जो आप अगर उनका रिटेल देखेंगे, मेरा हंच ये है कि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. ये कुछ और इनपुट कॉस्ट है उसके वजह से हुआ होगा, या कुछ और इश्यूज हैं उन जिनके वजह से हुआ होगा. अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें, वो बहुत दिलचस्प सिचुएशन, दिलचस्प मतलब हमारे लिए अगर हम वहां रह रहे होते वो उतना दिलचस्प नहीं होता. वो ये है कि उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, पर उनका डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इंटरनल जो डायनेमिक्स है वो उसका जो अगर हेल्थ चेकअप लेंगे वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो उनके क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरी जगह में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हर जगह में उन्होंने उनका ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ और मूव कर गया, क्योंकि वो यूएस से हटके दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो वहां पे ब्रिलियंट कर रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर आपको जो पिक्चर है वो संतुलित एक बैलेंस्ड वे में देखना पड़ेगा. तो इंटरनल डिमांड का वहां पे चैलेंज है. तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची हैं, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो हैं वो सीधे मान लीजिए अफ्रीका, इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन बना रखे हैं, पर फिर भी इसका इंपैक्ट जरूर हो रहा होगा.
3: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% की बढ़त के साथ 153,486 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था और चांदी 0.6% बढ़कर 235,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। उद्यम इस वक्त निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करने की या सब्र करने की या थोड़ा बढ़ाने की?
2: नॉर्मल काम करने के, कुछ स्पेशल नहीं करना। निवेश जब आप करते हैं वो बोरिंग होना चाहिए। एक्सरसाइज की तो डेली एक्सरसाइज में जो करते हैं, हर रोज आप नया एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वही प्राणायाम करेंगे, जो भी आसन करते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो जो रेगुलरली करते हैं वही कीजिए, और बोरिंग चीजें करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: सो समटाइम्स डूइंग नथिंग कैन आल्सो बी अ स्ट्रेटजी।
2: ओह एब्सोल्युटली।
0: ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बिफोर दैट, यस, थैंक यू वेरी मच उदयन फॉर जॉइनिंग अस एट आकाशवाणी एंड giving us an insight into the markets. All right, the headlines now. Benchmark domestic indices decline around 1%. Sensex plunges over 800 points. Nifty settles below 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states. And that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. So, namaskar. इस कार्यक्रम में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। आज आपके साथ है अर्पना। 11:41 और 5 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज के साथ। संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम है ससुराल। और इस गीत के बाद अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर से मोहम्मद रफी की आवाज में होगा, साथ दिया है आशा जी ने और संगीत पद है ओपी नैयर का। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है नया दौर। तो दो गीतों का बैक टू बैक आप आनंद लेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज गीत मेरे मनमीत में।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: ग्यारह बजकर 50 मिनट और 25 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में। अगला गीत होगा लता जी की आवाज में, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म का नाम है मेरा साया।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 25 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आशा जी की आवाज में होगा, ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय है विकासशील देशों के बीच सहयोग के जरिए शुष्क क्षेत्र की कृषि में बदलाव। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र के जुड़े साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए

0: खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म जिनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केट प्लेस को चलाता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरन एसेट्स कंट्रोल ने उन दो कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जिन पर जिनबी गारंटी के कामकाज के लिए जरूरी डिजिटल करेंसी, प्रौद्योगिकी और दूसरी वित्तीय सेवाएं देने का आरोप है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-track projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometres to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and will also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, yesterday inaugurated the 6-lane Porvorim Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said where infrastructure is good, there is capital investment. And where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Porvorim corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged Memoranda of Understanding, MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू है आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कर रही हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता भी साथ में। कि दिल तो ले ही लिया है, अब जान का क्या इरादा है, साफ साफ कह दो, क्यों धड़कने को तड़पाते हो।

जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। दिल की ये कहानी या तुमने समझी या फिर हमने जानी।

तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है, तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है। कदम तो चलते हैं मगर मंजिल का पता नहीं होता।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम है निशिगंधा। अंजू है आपके साथ।

अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। कभी मेरी नजर से देखो, तुम अपनी कीमत खुद ही जान जाओगे।

अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है। अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है।

दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। जब तुम सामने आते हो तो खुद का ठिकाना भी भूल जाते हैं हम।

जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, तेरी एक निगाह के सिवा हमें और क्या चाहिए।

खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती, खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती कि ये दिल तड़प कर पुकारता है तुम्हें जब भी घुटने टेकता है किस्मत के आगे।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम फिर आपसे मिलेंगे 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICAR-ISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आवर्जन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केटप्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari elevated corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, "Where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created." He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvari corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged Memoranda of Understanding, that is MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defense guns will strengthen the air defense architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anuradha Kumar Dissanayake in Colombo. Municipal Corporation of Delhi, MCD, has intensified its enforcement drive against dangerous buildings, unauthorized constructions and violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws across all 12 zones of the city. As part of the intensive enforcement exercise carried out today, 34 demolition actions were undertaken across all 12 zones of MCD. In addition, 17 properties were sealed, 22 show cause notices were issued and 4 demolition orders were passed. MCD had also carried out enforcement action yesterday, during which 17 properties were demolished and 5 other properties were sealed for violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws. Under a massive survey of PG buildings across the national capital, approximately 1,243 buildings where PG facilities are operational have been identified, accommodating approximately 24,000 occupants. The survey exercise is continuing across Delhi and directions have been issued to complete the survey by today. India ended their campaign at stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad on a high note, winning a total of 15 medals, including 4 gold, 3 silver and 8 bronze, with 2 gold and 4 bronze medals on the final day yesterday. And that is the end of this news bulletin.

0: दोस्तों, समय हुआ है 1:11:07। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही मधुर गीत कार्यक्रम गीत सुहाने में। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, पर सुकून सुकून सिर्फ तेरी तस्वीर देती है तन्हाई के झेले में।
1: तस्वीर

इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, मेरी मोहब्बत पे शक न करना क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं।

तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, पर हर धड़कन ने रुककर कहा कि तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं।

नजरें जहां भी जाएं, बस तुम्हारा ये अक्स दिखाई देता है। नजरें जहां भी जाएं, बस तुम्हारा ही अक्स दिखाई देता है। हर पल यही लगता है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। जब भी हवाओं में कोई साया लहराया सा लगता है।

न कोई पर्दा न कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, न कोई पर्दा न कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, तेरी सादगी नहीं जो जादू किया है मेरे इस दिल पर।

चांद भी तुम्हें देख नजरें चुराता है और बादलों के पीछे छुप जाता है। उसे डर है कि जमाना तुम्हें देखकर कहीं उसे न भूल जाए।

पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, खुदा के लिए रुक जाओ कहीं रात ढल ना जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण, बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमय का। मैं हूं अंजू आपके साथ, लेकर बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

हर एक रुत में तेरा इंतजार करते हैं, न तुम समझ सकोगे जिस कयामत तक हम तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं।

तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। एक ही दिल तो था हमारे पास, वो भी हम उसके नाम कर बैठे।

नजरें चुराने की उम्र में नजरें मिलाने का दौर आया है। नजरें चुराने की उम्र में नजरें मिलाने का दौर आया है, जैसे कह रहा हो कि अब दिल हारने का वक्त।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। जल्द ही आपसे जब मिलूंगी, क्योंकि अब स्टूडियो में आ चुकी हैं भारती। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आगे का सफर रहेगा हमराही के साथ, भारती के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक तरह की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गईं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said, the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highways, bridges, flyovers and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity, along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvari corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. The Department of Land Resources (DOLR) under the Ministry of Rural Development will launch the operational guidelines for the Digital India Land Records Modernization Program (DILRMP 3.0) today. The ministry informed that the upcoming DILRMP 3.0 will roll out as a central sector scheme with an anticipated financial outlay of 565.50 crore rupees. The department will also implement this ambitious 5-year roadmap across all states and union territories. The launch event will unveil the co-version vision of DILRMP 3.0, which shifts the focus from simple digital record keeping to establishing a comprehensive GIS-enabled land stack. The ministry added that this digital public infrastructure will seamlessly integrate maps, land ownership details, property registration and court cases into a single interoperable ecosystem. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will address 3-day Global Dryland Congress 2026 in New Delhi today. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that jointly organized by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT. The event is themed on transforming dryland agriculture with South-South cooperation. It added that the event will be held at the National Agricultural Science Complex and doubles as a milestone celebration of 50 years of ICAR-ICRISAT partnership. In Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team advanced to the semi-finals after a dominant 15-0 victory over Chinese Taipei at Moki in China yesterday. Captain Anmol Ikka led the charge with a sensational 6-goal haul, all coming from penalty corners, as defending champions India recovered from a goalless opening quarter to overwhelm their opponents in the remaining 45 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह कोई चुपचाप हमारे पास बैठा महसूस होता है। कहने को तो ये सिर्फ एक एहसास है, मगर कभी कभी यही एहसास पूरी दुनिया से ज्यादा अपना लगता है। प्यार शायद वही है जहाँ शब्द कम पड़ जाएं और आंखें बहुत कुछ कह जाएं।

कभी लगता है जैसे प्यार भरा मौसम अचानक दिल की खिड़की पर दस्तक दे गया हो, हवा में किसी की याद की खुशबू हो और मन पुराने सपनों की गलियों में फिर से टहलने लगे।

हमने जो सपने देखे थे उनमें कुछ रंग समय ने भर दिए और कुछ रंग अब भी आपकी यादों के पास सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ सपने आंखें खुलने के बाद भी दिल में सोते नहीं, वे उम्र भर हमारे साथ चलते हैं।

हम सफर सिर्फ वह नहीं जो सफर के साथ चले, हम सफर तो वह है जो दूर होकर भी हर मोड़ पर अपने होने का एहसास दे जाए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कभी सुनी बहारें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं और दिल पूछ बैठता है, क्या कोई हमें भी उसी तरह याद कर रहा होगा जैसे हम उसे याद कर रहे हैं।

मन भी कोरे कागज जैसा होता है। फिर कोई आता है और उस पर अपने प्यार की ऐसी कहानी लिख जाता है जिसे मिटाने की कोशिश भी यादों को और गहरा कर देती है।

शायद प्यार की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश लेना और बिना कहे भी एक दूसरे को समझ लेना।

कुछ रिश्ते तो पलकों के पीछे छिपे रहते हैं, दुनिया से अनकहे मगर दिल से बेहद करीब। आंखें बंद करो तो वही चेहरा सामने, वही मुस्कान यादों में और वही आवाज दिल के किसी कोने में सुनाई देती है।

इस रात सुहानी में कुछ पल उन खूबसूरत एहसासों के नाम करें जो हमारे पास नहीं होकर भी हमारे दिल के सबसे करीब हैं। गीतों की मिठास के साथ, यादों की खुशबू के साथ और उस प्यार के साथ जिसे कहने के लिए शायद शब्दों की नहीं बस एक धड़कते हुए दिल की जरूरत होती है। और छोड़ के जा रही हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ आपको, और जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर। जी हाँ, फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से

0: बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं के शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरीना सवालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिका पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गाफ का मुकाबला कजाकिस्तान की एलेना रायबानिका से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म नया संसार से, लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार चित्रगुप्त, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म नसीब अपना अपना से आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म एक फूल दो माली से रविशंकर शर्मा की आवाज में, संगीतकार रविशंकर शर्मा, गीतकार रविशंकर शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजराना प्यार का से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार विठल भाई पटेल, संगीतकार हेमंत भोसले।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

प्रोग्राम का आखिरी गीत है फिल्म साजन साथ निभाना से उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार समीर। और छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ, जल्द मिलूंगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है।

0: और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये पांच रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गॉफ का सामना कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना से होगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve connectivity, ease congestion and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, 5 of the projects covering 11 districts in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana will add about 540 kilometers to the existing railway network at a cost of over 10,021 crore rupees. 3 other projects costing more than 10,700 crore rupees will cover 14 districts in West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding around 656 kilometers to the network. On the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Mr. Vaishnaw said the service will commence next year. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. Mr. Goel stressed the need for

सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन ईश्वर की ओर से मिला एक नया अवसर है। बीती बातों का बोझ छोड़कर आज की शुरुआत विश्वास और मुस्कान के साथ करें। मन में उजाला हो तो साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है। तो जी हाँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की।

कृष्ण का स्मरण जीवन में प्रेम, सरलता और मुस्कान भर देता है। जैसे कृष्ण की बांसुरी बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी ओर बुलाती है, वैसे ही हमारा व्यवहार भी प्रेम और अपनेपन से भरा होना चाहिए।

ईश्वर से केवल सुख मांगना ही क्यों, ऐसी शक्ति भी मांगी कि कठिन समय में हमें टूटे नहीं, सही रास्ते से भटके नहीं और दूसरों के लिए भी सहारा बन सके। मन मजबूत हो तो परिस्थितियां भी बड़ी नहीं लगती।

जीवन की दिशा हमेशा परिस्थितियां तय नहीं करती, हमारे विचार और कर्म भी उसे दिशा देते हैं। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहे, आज ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में भी उजाला बढ़े और किसी दूसरे के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए।